0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: The following is a paid program. The views and opinions do not represent those of CKJS or its advertisers.
2: संगीत संगीत
3: संगीत रूदी खुराक है
2: आत्मा दी आवाज है
3: कुदरत दा वरदान है
2: और प्यार दी जुबान है
3: जिंदगी जिंदगी
2: जिंदगी प्यार है
3: जिंदगी सांझ है खिमा है
2: जिंदगी एक रंगमंच भी है
3: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज
2: कल्चर ऑफ पंजाब
3: कल्चर ऑफ पंजाब

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: अच्छा, जिंदगी एक ऐसा मौजू है, ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर जितनी बात कर लें कम होगी और यकीनन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जिंदगी को और इसके किसी भी पहलू को जनरलाइज तो किया ही नहीं जा सकता। अब देखें ना, किसी के लिए तो जिंदगी खुशियों का ताजमहल है और किसी के लिए अपनी हसरतों का कब्रिस्तान, किसी के लिए सुहानी सुबह है और किसी के लिए ये अंधेरी रात। कुछ को लगता है कि ये बादे सबा है और कुछ के लिए जून जुलाई की झुलसती लू। बहरहाल यहीं खत्म नहीं करेंगे, इस बात को जारी रखेंगे, पर इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: अच्छा, अगर ये मान भी लें कि कुछ रंग हमारी किस्मत खुद बन जाते हैं, तो कहीं न कहीं एक सच ये भी है कि कुछ रंग हमें खुद चुराने पड़ते हैं, मेहनत, डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस से। चलें फिर क्यों न आज ये वादा करें कि हम जिंदगी के सारे खूबसूरत रंग चुरा लेंगे। कामयाब ना भी हो पाए तो कोई गम नहीं, कम से कम कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल तो हमारी कोशिश ये है कि अच्छी बातों के साथ साथ आप तक बेहतरीन म्यूजिक भी पहुंचाया जाए आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में, विच इज ब्रॉट टू यू बाय देवदत्त लव।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: ਆ ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
2: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ YouTube ਤੇ।
4: अच्छा, आपकी सोच, आपकी पर्सनालिटी ने खुद ही बता देना है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने पॉजिटिव हैं। मैंने देखा है कि जिन लोगों में खुद लो सेल्फ एस्टीम है ना, दे स्टार्ट जजिंग द अदर पर्सन विद हिज पोजेशंस एंड नॉट बाय हु ही और शी एक्चुअली इज। ऐसे लोग बस यही नोट करते रहते हैं कि आप कौन सी कार ड्राइव करते हैं, कपड़े और ज्वेलरी कैसे डालते हैं, कितने बड़े मकान में रहते हो। डिजाइनर लेबल्स इनके लिए स्टेटस सिंबल हैं, और एक्चुअली मैं तो ये फील करती हूँ कि इनसे अगर ये सब चीजें ले लें तो दे विल डाई ऑफ शेम, और वो इसलिए क्योंकि इनकी जिंदगी घूमती ही सारी इन मटेरियलिस्टिक चीजों के इर्द गिर्द है।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: एक बार ये सोचकर बताएं कि ज्यादा बेटर फीलिंग क्या है, कि लोग ये याद रखें कि आपकी पहनी हुई ज्वेलरी बहुत महंगी थी, आपके आउटफिट्स बेहद कीमती हैं और आप बड़े बड़े डिजाइनर्स, महंगे डिजाइनर्स की क्रिएटिविटी का नतीजा पहने हुए, या फिर ये कि आप खुद एज एन इंडिविजुअल बहुत कॉन्फिडेंट, बेहद ग्रेसफुल हैं और लोगों की नजर चाह कर भी आपकी ड्रेस या ज्वेलरी पर ना जाकर आप पर टिकी रहती है। How very smartly dressed. मेरे ख्याल से इस कॉम्प्लीमेंट से तो बेटर कॉम्प्लीमेंट ये है कि How very confident and intelligent.

0: कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज।
1: अक्सर हम लोग इंक्रीज्ड वर्कलोड की बहुत शिकायत करते हैं। किसी से भी पूछ लें कि आप मिलते ही नहीं आजकल, तो सबसे कॉमन आंसर ये है कि टाइम ही नहीं मिलता। असल में काम नहीं बढ़ा, हम लोग अनऑर्गेनाइज ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, आपको पता है कि एक हनी बी 2 मिलियन फ्लावर्स को विजिट करने के बाद महज 500 ग्राम शहद इकट्ठा कर पाती है? तो जरा कंपेयर करें, हमारा वर्कलोड तो कुछ भी नहीं ना उसके मुकाबले में, फिर शिकायत क्यों इतनी काम से, लाइफ से। बहरहाल सब शिकायतों को साइड पर रख एंजॉय करें ये अगला ट्रैक कल्चर ऑफ पंजाब में प्रीत के साथ।

0: सगल माहे नगटी का वासा सगल मार अवहेरी सगलियां की हो बहन भाण जी जिन्हें बरी तिश्चेरी। हमरो परता बड़ो बबेकी आपे संत कहावै ओह हमारे माथे कायम और हमरे निकट ना आवै। नाको काटी कानो काटी काट कूट कै डारी कहो कबीर संतन की बैरनो तीन लोक की प्यारी। आसा जोगी जति तपी सन्यासी बहुत तीर्थ भ्रमना लुंजत मुंजत मोन जटा तार अंत तउ मरना ताते सेवी अले रामना। रसना राम नाम हित जाकै कहां करे जमना रहाओ आगम निर्गम ज्योतक जाने बह बहो ब्याह करना। तंत मंत्र सब औखद जाने अंत तउ मरना राज भोग अरशदर सिंहासन बहु सुंदर रमना। पान कपूर सुभाषक चंदन अंत तउ मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहू ना उबरना। कहो कबीर यो रामै जम पाओ मेट जन्म मरना।
1: सर्व सांझी गुरबाणी प्रोग्राम दे स्पॉन्सर हन टॉप लिंक लोन एंड लीजिंग। तुहाडा ट्रक ट्रेलर दा लोन कितों नहीं हो रहा जां तुसी यूज्ड ट्रक खरीदने हन ते सानू कॉल करो 204-480-9600 जां ऑनलाइन विजिट करो toplinkfinancial.com।